हारा तंबू तथा ये सवार गाड़ी ते तंबू रुखूटा लाकड़ी हो जीते आरे ने कले सोरग खूनो खुटा वो जोमिते देखी ते पाइया भय तामा मोई यारे।